ननाय वाक मशलाई वो मयांग प्यानान वोन में मामा बुथाद पंजरी सैदिंग कोरवी पायन पाय सामयनी कारण समलांग निलिवाई नरदेन लुरुलाव मखोन्यन

ताबिरे मयेंबम लता चनू सकबा मैते इसैदा तेंबान बमपुना साई ओलकबा आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांधोकचरी मणिपुरी मदम इसै सिंह अहानबदा खुदोल तमजरी अहन थेम हेमारानी देवी सकबा अहैबम कृतमलाना सैलेंबा मतम इसै।

आकाशवाणी इम्फाल मोरंग टीवी आईबीना पाव पाजरी अहानबद मरुई पाव डोनर अमसुंग शिक्षा की राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंदा मजुमदर के निमितनी की मणिपुर खोंजत ngarang loisinkre मियामदगी नमदना सेल खायबद चेनब अहानब मणिपुर राइफल्स के हबिलदार अम याउन मियै अहम मणिपुर पुलिस ना फारे अमसुंग गुनसुबे एशियन गेम्स ngasitegi जापान की आईसी नगोया दा हौरगनी डोनर अमसुंग शिक्षा की राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंदा मजुमदर की नुमिनी की मणिपुर खोंजत ngarang loisinkre मा की खोंजत असी की मनुंग दा राज्यपाल अजय कुमार भला मुख्यमंत्री यमनाम खेपसान गो उनदुना मणिपुर दा पाइखलिबा अमदी अतै पाइखत कदब प्रोजेक्ट के आगी मतांग दा वफंग के खनखी तुंगदा राज्य की चीफ सेक्रेटरी अमसुंग अतै एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिंगजु उनदुना डोनर मंत्रालय अमदी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मखा दा राज्य असी की दमक पाइखलिबा तोंगान तोंगान बा प्रोजेक्ट चिंग की मतांग दा वफंग के खनखी मसीदासु नतना सेवा संकल अभियान की मखा दा बेनिफिशियरी सिंगजु मंत्री ने उनदुना डोनर मंत्रालय की मखा दा स्कीम सिंगी मतांग दसु मियाम द

0: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯘꯅꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯕꯥꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯇꯧꯔꯤ
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
3: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
4: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
6: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला APTO-SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के CEO और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
7: The government is supporting the sector through technology transfers.
8: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
6: गैलेक्सी आई के CEO सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
9: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
8: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
10: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन

0: समापन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce. India's software services exports surge 8.2% year-on-year to over $221 billion in 2025-26, says RBI. And 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More details from our correspondent.
3: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and

0: नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष, ये केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
2: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। पर जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई। तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में सीईओ बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
1: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना। और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है आई गॉट कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार आई गॉट कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक आईगॉट पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
1: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
3: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की, मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल, और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो, तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल। प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं, तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और

0: उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही या ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, मतलब बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है, तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे, और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
0: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
2: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है, और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है, क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है।
3: हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा। तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में है, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं, उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो है वो वही स्कीम्स की प्रॉब्लम जो होती है उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो 20-25 क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं, और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इम्प्रूवमेंट आया। तो इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 कॉलेजी के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में। और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ। तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी।
1: बिल्कुल,
3: तो ये हुआ है
1: बिल्कुल। और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ये पूरा होना है। और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं। तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
4: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक आस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं। आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में है
1: जी,
4: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है।
1: बिल्कुल,
4: वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी,
4: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
1: जी, जी।
4: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशन कितने हैं।
1: बिल्कुल,
4: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशन है, सुरक्षा के डायमेंशन है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना, कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-35-35-37 साल बाद कोई कोई डैम्स, कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
1: बिल्कुल,
4: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया।
1: बिल्कुल,
4: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है। तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं,

0: और उसकी डिलीवरी होती है, तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां दिक्कत देखते थे, और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है, वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी, कि आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग
1: जी
2: के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए कि मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है।
1: जी
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलिए। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ। उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चरल आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया। और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे, तो हर MLA को, हर MP को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो उनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इम्प्रूवमेंट आया, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इम्प्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और इसकी वजह से जियो स्पेशल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए, इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
1: बिल्कुल, तो ये जो नजरिया है मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
0: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूं, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
1: जी।
0: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
1: नहीं
0: वो अब दिव्यांग हो गया, वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना।

0: तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का, और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
1: जी जी,
0: तो वो भी एक अलग से ये थी, तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे ये नहीं है, ये चिंतन है
1: बिल्कुल,
0: हम पूरे भारत को लेकर। और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
1: जी।
0: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में वो आपने जो पूछा तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स आप अपने आप आते हैं।
1: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो हम लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करें, तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक। तो हम लोग लगे बहुत और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे, पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ, पर उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए और वही इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए, और ये बहुत मेरे विचार से जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती है, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना, क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
0: देते। उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए, तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता है। सो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देना। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, मुझे क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है, तो ये सोच

0: वो ना चाइना के साथ बैठते थे ना रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हमने करीब 350 मीटिंग थी, हर स्टेट में गए।
1: जी
0: हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हुआ, वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए, तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा,
1: जी
0: और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला, जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो भारत ने करके
1: निकल
0: दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई।
1: गया।
0: ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया थे। ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप। और ये लीडरशिप प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा मुझे इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए, और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं। वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं, अगर विश्वास करते हैं पर फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है
1: बिल्कुल
0: कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है, और उसको करके हम लोगों ने दिखाया, और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए
1: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते
0: करते
1: हैं,
0: हैं।
1: यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
2: बिल्कुल, देखिए जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक
1: जी
2: फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इनवाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत
1: रिम
2: की एक
1: में है जी,
2: महत्वपूर्ण भूमिका है। तो
1: आसियान।
2: बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार
1: जी
2: अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी
1: से
2: बात
1: बात
2: कर
1: सकते
2: सकते
1: हैं,
2: हैं,
1: बिल्कुल
2: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में
1: बिल्कुल
2: शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है। वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ
1: निकला
2: तो उस
1: उसमें।
2: समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
1: बिल्कुल, और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है, वे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047। और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक की हमारी जीडीपी बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए, और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे,
1: जी
0: और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है, वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार उन नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमलीजामा पहना पाती है।

0: अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: ताबिरे इकाई घूमने जरिबा भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ना मियाम की सेवा तौरपा चही कुनमंगा मपुंग फारपगा मरी लेना न्यू सर्विस डिवीजन ना पुथोपा अखन्नब थौरम। आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबिरसी नाइखो ताखिसी।

आकाशवाणी इम्फाल हौजिकता भी रसे युमनाम इबोहन भी सिंह न सकबा सगोल सेम बिलाशिनी देवी न सैरेंगबा मतमी सही।

0: status of a fundamental right. Subsequently, in 1996, the court imported two principles that continue to this day to anchor our jurisprudential reasoning, namely, first, the precautionary principle, which enjoins the state to act in advance of proven harm rather than in its aftermath, and second, the polluter pay principle, which places the burden of restoration squarely upon the party responsible for the damage. That very same year, the doctrine of absolute liability for industrial harm was also enforced. A year thereafter, the public trust doctrine was recognized, holding that our forests, rivers, and air are held by the state in trust for the benefit of the public at large and not owned by it outright. In the later years, the Supreme Court propounded a realistic theory to ensure that development was neither foreclosed altogether nor permitted without scrutiny, but was instead made answerable to the very people and land it stood to affect. That same pattern has carried us to the present day, where the Supreme Court has recently articulated the idea of ecocentric proportionality, postulating that environmental protection must be rigorous yet intelligent enough to engage with the world as it exists. This notion has advanced a paradigm shift by permitting development solely in conjunction with enforceable conditions, expert oversight, restoration, compensatory afforestation, and accountability. Consequently, the question before our courts is no longer conservation versus development, but rather how the two can be harmonized and sustained together. One important development is the movement from environmental rights towards climate-related rights. The recent Indian jurisprudence on climate has brought this question into sharper constitutional focus by recognizing that the adverse effects of climate change can implicate fundamental rights of equality, livelihood, health, and the conditions necessary for the meaningful enjoyment of these rights. A second development is the movement from examining isolated environmental injury towards understanding cumulative ecological harm. A river does not experience pollution according to administrative boundaries. A forest does not understand the distinction between one project from another. The atmosphere does not recognize national frontiers. Climate adjudication must therefore look beyond the immediate proposal and examine the larger ecological system of which that project forms a part. The challenges immediately ahead will be still more demanding. The energy transition will require new infrastructure, new technologies, and new patterns of land and resources use. Cities will have to reconcile mobility, housing, and economic activity with air quality, water security, and ecological resilience. Climate disputes will also increasingly involve multiple actors and multiple jurisdictions. The global judicial experience is equally instructive because there is no single constitutional route to environmental protection. Nepal has recognized environmental protection as part of the right to life. Sri Lanka's Ipavela case connected sustainable development with finite natural resources and environmental responsibility. South Africa's Constitutional Court has treated sustainable development as the framework through which environmental protection and socio-economic developments are to be reconciled. Brazil's Supreme Federal Court has gone further, addressing not merely individual environmental injuries, but governments' omissions and the functioning of environmental policy itself. Chile, Russia, and Armenia further offer constitutional perspectives on environmental rights, sustainable development, and responsibility towards future generations. The United States also reminds the environmental adjudication must operate within statutory boundaries and principles of institutional competence. Australia, meanwhile, has required its courts to confront difficult questions of climate science, causation, and the possible reach of common law duties. These varied challenges and approaches demonstrate that comparative environmental jurisprudence should not become an exercise in transplantation. It should become an exercise in dialogue. Through each enlightened decision, courts around the world have endeavored to highlight that the environment is not an inert backdrop to human ambition, but a living, breathing protagonist in the story of our shared well-being. Each judgment pronounced is a drop that joins the larger stream of global environmental stewardship. But then the tide of justice cannot flow in isolation. It draws strength from the tributaries of collective will, scientific wisdom, and international cooperation. Our courts must become the bridge between the sagacity of our ancestors and the aspirations of our descendants, ensuring that the river of progress does not run red with the silt of destruction through the rocky terrains of inaction and indifference. As we embark on this conference, let us together ensure that this river of responsibility never runs dry and that it continues to flow strong and clear for generations to come. Thank you very much. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
1: बहुत-बहुत धन्यवाद
2: श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी सत्र को संबोधित कर रहे थे। साथियों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दुनिया भर के अलग अलग हितधारकों को एक साथ लाने के लिए पर्यावरण और जलवायु की गतिशीलता का भविष्य इस विषय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस खास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का मकसद पर्यावरण से जुड़ी अहम चुनौतियों पर सार्थक बातचीत, जानकारियों के आदान प्रदान और साथ साथ मिलकर काम करने के लिए एक बेहतरीन ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के जाने माने एक्सपर्ट्स, जुडिशियल और कानूनी पेशेवरों, पॉलिसी निर्माताओं, शिक्षाविदों और मुख्य हितधारकों को एक साथ लाते हैं। और अब प्रधानमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर एनजीटी मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे।
3: And the Honourable Prime Minister has launched the NGT mobile application and now a short film on NGT.
4: NGT mobile application एक ऐसा स्मार्ट प्लेटफॉर्म जो न्यायिक सेवाओं को आपके मोबाइल तक लेकर आता है। अब अपने केस की जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान है। बस केस नंबर, ईयर और जोनल बेंच दर्ज करें और कुछ ही सेकंड में केस स्टेटस आपके सामने होगा। अगली सुनवाई की तारीख जाननी हो या कॉज लिस्ट देखनी हो, सभी आवश्यक जानकारी अब आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है। जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन के माध्यम से आप अपने केस से संबंधित आदेश और निर्णय कभी भी देख सकते हैं। वहीं डिस्प्ले बोर्ड फीचर आपको एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की उस समय की चल रही कार्यवाही से जुड़े रखता है। ई फाइलिंग, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, करियर एंड रिक्रूटमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस भी अब एक ही ऐप पर उपलब्ध हैं, जिससे समय की बचत होगी और जानकारी तक आपकी पहुंच और भी आसान बनेगी। आप अपनी आवश्यक जानकारी को फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर केवल एक क्लिक में उसे फिर से देख सकते हैं। एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। आइए तकनीक को अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और न्यायिक सेवाओं को एक नई डिजिटल पहचान दें। एनवायरमेंटल जस्टिस एनी टाइम एनीवेयर।
1: तो अब एनवायरमेंटल जस्टिस,
3: दैट वाज अ शॉर्ट फिल्म ऑन द फीचर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मोबाइल एप्लीकेशन एंड द प्लेनरी सेशन इज packed with the delegates and domain experts and legal numeraries and the honorable judges of the honorable high courts of various states of India and also the Supreme Court of India, and everyone is eagerly looking forward to the inaugural address of the Future of Environment and Climate Dynamics Conference by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
2: जी कौशिक जी, दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं।
3: And now the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
5: कार्यक्रम में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, यह हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव देवी और सज्जनों, प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है। मुझे खुशी है एनजीटी की ये कॉन्फ्रेंस उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है और मैं हर भारतवासी से कहूंगा, आप भी दम दिखाइए। हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है। इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण

सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी। 12 साल पहले 2 गीगावाट, अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2 गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में LED बल्ब जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में LED बल्ब घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने है। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, यह आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम

आगे बढ़ाऊंगा जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है। 950 गुना 2014 से पहले के साल में भारत में 3000 से भी कम ईवी की बिक्री थी। 3000, वहीं पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी है। यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है और इसे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था। ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे, 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवे का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक्स के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी
पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक है इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं, बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और ये अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट को वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानव

0: दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा भी दिए हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन के सत्र का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। चलते चलते हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि कल 20 सितंबर 2026 को समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित होगा। और अब अपने तकनीकी सहयोगों कमल सिंह, सुमित कटियार, ओब इंचार्ज विवेक तोमर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार के साथ मैं यानी कि कमल किशोर बड़ाइक और अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए वापस आपको आकाशवाणी के दिल्ली के स्टूडियो लिए चलते हैं। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण विज्ञान भवन से सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे कमल किशोर बड़ाइक और कौशिक रॉय। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर।

0: ताइबंग माही कोल सिदा तमलीबा नहा ओइरबा सिंगना करम करमबा मंगलान मंगलीबा हाइबगी मतांगदा महिरोयमगी मंगलानगी मपावमुक तामिनसी
1: आइगिमिंग क्यूरी कोइजम गवी आइ लमसांग बाजारदगिनी मणिपुर आइ इमालेबाग सनालेबागसे मसीसे करमबा मणिपुर आइगी मोंदा ओहेनिंगेना आइना थामजोन हाइबतारगदि अहानबदा ayhakna thamjaning base yamna peace oiba shanti oiba as a youth amoina ai youth ni ai satra amani mahiro amani aduna ai youth sing sida hena focus oina tawningi ani subada prakriti se yamna nungshiba youth sing se inkhala iba naha sing sina prakriti sibu yamna nungshiba nature lover yam ohning an thamjage maramdi karigino ha matamda akhoinu si mayok nariba samasya ma yamse akhoi gi climate change sabam thokta momong da kahena sarakpa adegi ningtham thadoiragasu yamna ingjelakpa adegi tanjadana ingadaba matamna ingdaba nongju nongsa yamna nongkana churaga isingi chause angakpa phanna manipur da hojuk sik mayok narise matamamadi thainagi matamda di mashpane taram deba egi tungi generation sida aina mangjai ba manglan haizabatare ko ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯊꯛꯁꯤ ꯀꯥꯁꯤ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯕꯦꯕꯥꯔꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯣꯠꯇꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯐꯔꯕꯗꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯐꯔꯕꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯇꯤꯖꯝꯀꯣ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯣꯡ ꯌꯥꯕ ꯇꯥꯏ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄ ꯇꯧꯈꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯔꯛꯀꯤ ꯏꯅ ꯂꯥꯏ ꯁꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯕꯦꯟ ꯏꯌꯔꯁ ꯗꯤꯚꯥꯁꯇꯦꯁꯟ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯅꯪꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯨꯅ ꯂꯤꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩꯀꯣ ꯇꯣꯕꯥꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯛꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯇꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯌꯨꯠ ꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ

0: ದಿಯಾ ಖ್ವೈರಪ್ಪಂನ ಫಂಗ್ಲಕ್ಕಿಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮನುಂಗ್ದ ಐಗಿ ಪುನ್ಶಿ ಹರಿಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸಿದ ಇಂಗ್ ಸೊಕ್ ಲಿಸಿಂಗ್ ಅಮಗ ಚಮಾಪನ್ ಮೌದ್ರಾಗ ಮಾಪನ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮನ ಫಂಗಿ ಅದುಗ ಶಂಕರ್ ಟೋಕಿಸ್ನ ಪೀಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಶಂಕರ್ ಟೋಕಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಫಂಗಿ. ಮಣಿಪುರಿ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ 39 ಹೆನ್ಬದ ಮಹಾಕ್ ಸರುಕ್ ಯಾಕಿ ಆಕ್ಟರ್ ಒಯರಂಬಕಕ್ ನತನ ಮಹಾಕ್ ಮಣಿಪುರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 50 ಹೆನ್ನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಪಿಬಿರಮಿ. ಮಮ್ಮಿಗೆ ತಾಯ್ಬಂಗಿ ತಾಂಗ್ಲಬ ಮನಿ ಒಯ್ಬಿರಂಬ ದಿಯಾ ಖ್ವೈರಪ್ಪಂ ಇಂಗ್ಸೊಕ್ ಲಿಸಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಗೆ ಸುಪ್ನ 25 ಜನವರಿಗೆ ತಾಂಗ್ ಕುನ್ಗ ಮಾಪನ್ದ ಮಸಾಗಿ ಅನಾಬ ಅಮದಗಿ ಮನುಂಗ್ ಮತಂ ಚಾದನ ತಾಯ್ಬಂಗ್ ಥಾದೋಕಿ. ಅದುಬು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ತಾಯ್ಬಂಗ್ದ ಮಹಾಕ್ನ ಲೌಬಿರಂಬ ಮಪಾಲ್ ನಾಯ್ದ್ರಬ ಥೌದಾಂಗ್ದಿ ಗಸಿಗೆ ಮಿರೋಲ್ನ ಸಕ್ನ ಸೋನದುನ ಲೆಹವ್ರಿ. ಸಕ್ನಾಯ್ರಬ ಸಿಂಗಿ ವಾರಿದ ತಾಬಿರೆ ದಿಯಾ ಖ್ವೈರಪ್ಪಂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇಂಫಾಲ್ ಹೌಸಿಕ್ ದೆಲ್ಲಿದಗಿ ರಿಲೇ ಲೌದುನ ದೋ ಪೆಹರ್ ಸಮಾಚಾರ್ ಮಿಕ್ಕು ಖುರಗಿ ಮನುಂಗ್ದ ತಾಬ ಫಂಗ್ಬಿರಗನಿ.
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं. श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे. प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया. सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी. संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी. और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं. मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं.
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं. ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं. इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हैं. श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का

0: प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उभरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
0: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
4: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
2: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
4: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर फौजी भाइयों के लिए दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

आज फौजी भाइयों की सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो आइए सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है आजा नचले। आवाज़ दिया है सुनिधि चौहान ने, शब्द रचना पीयूष मिश्र के हैं और सुरों से सजाया है सलीम सुलेमान ने।

फौजी भाइयों, अभी आपने सुना बाहुबली फिल्म से एमएम केरावानी और पलक मुछल के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना मनोज मुंतशिर के हैं और संगीत से सजाया है एमएम केरावानी ने। आइए अब सुनते हैं रैद फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में एक गीत। गीतकार है मनोज मुंतशिर और संगीतकार है तनिष्क बागची।

फौजी भाइयों, अभी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कंगला चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं राबता फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक गीत।

आइए अब सुनते हैं एआर रहमान के संगीत निर्देशन में रंग दे बसंती फिल्म से एक गीत, आवाज़ दिया है के एस चित्रा और दलेर मेहंदी ने।

आइए अब सुनते हैं जवान फिल्म से शिल्पा राव और विशाल दादलानी के युगल स्वरों में एक गीत। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार हैं अनिरुद्ध रविचंद्र।

0: सना जाओगी कोबी महा महादेवी में लोग रहा तंगांग उपाधि पंगी देवी तो मबुक सेंगी नहा मस्सा येंग में नुंगाई बा कोई न थी उपाधि पी के दबोगी मान पी बा उपाधि से कुंठा मापन देगी निपुह है छुप चिदा ओजा तो मालू अच्छे सावे ममांग तो उपाधि लंकाई रे मेरगा लंकाई से मिनारोई इसे ही तो मिनारोई नारी जाति नूपी है बा जासे मा हाउजिंग नारी लेबल लिंदु मुखा हाउजिंग ती गेट बिसारत एमएसए साधु ऋषि ओले महागना हाउजिंग महाविद्यालय सिदा अध्यापक ओबीगे हेगना याबदी महाविद्यालय सिगे लाइबक फबनी सि हायर गाइगिदि लोइजे
1: आ फारे मतिंग मगुन खबर कागोस दे याबदि मटारे अरु इसे ही दो थबा कोई न पांग थोक तूना इसे ही मतिये मतंग सकतना तारा मचाबू ताहलो
2: आ काशी काशी काशी

0: अरे इसे ही वजह की थी यार। अदु बाबा हर जो अध्यापक हो गया हरी बनी ना माँ कुछ परीक्षा मती है मतलब वो की मठों का दरो की बोले न बैकुंठो बाबू
1: अध्यापक हो गया है जना जोशकार थारक नबनी ना मटिक चाहे चाहे खंग नबा परीक्षा मती है मतलब वो की मठों का बने बाबा हन बाबू न तमी जे हरी बनी शोई ना मीटर रोजी है बना दरो
2: होए माने होए काका मसाय
3: मेटेरोलॉजी है ब्रा न ट्रगा मेटेरोलॉजी है ब्रा आठ दो उधर शेडो पियो
2: मेटेरोलॉजी मेटेरोलॉजी मानी अम्हानी मेटेरोलॉजी मेटेरोलॉजी
4: क्रम नम अम्हा वो दुरी बा
2: न ती कौन थोक ती अम्हा वो न तो ये है बने न कोई साइंस नंबर छात्र सिंह ना मेटेरोलॉजी है बसे करी है ना आठ हाली
3: अतियागी हवा नुसे की मरम दन नहीं नबस साइंस वो मेटेरोलॉजी को हुई
2: आ मीते की लोनसत लिसत मना की मरमदा नई नव साइंस पु मीतई रो लोजी है नको
4: ओजाबु मीतई है बगा मीतई है बगा अनि से कई देखे न बगे करम बन चुम बगे मीतई मीतई
2: मीतई मीतई अनि मक चुमी बना अंदा खैतंग तई न भई वान
5: ब्यूट पट्टी आठो वापुक लोन दो अम तो नै नबियो मीतई मीतई
2: मीतई है बसिना खोंनां खों फंबी क्वायोन बिगी संग मजा
3: करम न
2: हाइबदि क्वाले चाब लाप सिंगना सुनु अहेंबा तैसन बिरमाबा मी हाइबदी मरेबा मसासिंग असामी बेंगोली हिंदू मुस्लिम नेपाली मिया मसिना तैसन बिरमाबा मी मी तै मी तै ना फी सेटपदा नामी हापा हिरकपदेगी मी तै असिबु मई तै बा मई तै हैन कौने
6: हिंदी
2: इंग्राजी संस्कृत बेंगोली वही इन सन्द्रीद मीतई की वही लोन अदुबु मीतई लोन अदुगा हौजिक सिंगतम हिंदू मुस्लिम मैतई मयांग मयांग मसिना लोनरीबा सिंगजु लोन असिबुना मणिपुरी लोन हैने कवे
6: ओजाबु मया गुआ है बसिबु कमदो बजानु आइजेनिंखलेदा
2: हाय माइग माइग ओनबदा माइ पाक नबा लाइवा दुबु मायो वा हैने कवे
7: मदुबु गाना बजानो ओजा हैनिंखलेदा
2: ए सिजिन नबा हिरबदि काना ग्रबजानि तंबी निदा
6: उजाबु कांदा वे प्रमाण फंबिख्रबो
2: लाइवा ग लोइना ना अम्मा दुगी मम्मी तम न कामबा अदुगा माई थोंग छिदा नोफे नोफे कोंग बगी मतो तराम तराम
1: फोम गे पले फम नाय द्रव सोमोय सिदा थाय न गे लोंचट लिचट मिचेरोलॉजी दुबो करी कर दुगे
2: याम काने नि कका मसाय मितेई न मसाबु मसक खंजबा हाइबसे मठौदा नत्रबदी सही चा खरगी बतुंगदा मीते यसे मीन तैसन बिन मन बदगी असेंग मसक असे मांग की बियाई कका
0: आ फरे सभा से लोशन न बतोर से आ नंग वजागी लेफम चाफम हिप न चान न बा छात्र साथी न खोय मैं चंग दन सिल्लो आई नहीं है कि हर बदी वजा गुरु खलु वजा न यान को चलु लम हेंग न को गंग छा आ आई की दी सिन लो जे
1: आ होना रो होना रो अपन थवा यम न को जाग से बातु अरुदी स्वामी जी नमस्कार नमस्कार
8: नमस्कार नमस्कार
2: अरुदी स्वामी जी बास तो बिना बा आश्रम मतंग नियंग ताबी रसी
8: आ न कोई की नरांदर बाबा है बतु खुरुम नहीं खेदा
6: है यंग खुरुम शिव जा
8: आ अदुगा न कोई की बरात तुरेल है बतु न कदाई दा
6: कोई ताऊ पियो जा जसे चल शिव जा
4: लखीपुर की पंडित बाबा हाल की मैत्री नो
5: माने साधु सिंगलो बाबा हाल की फागीद्रो
4: भाई हिंगी सेंगे हूँ हिंगली हयेंगे खे
5: हयेंगे हिंगन ताब अतन अखोसु कई खर तमसीद हिंग ताब मखोय उपाल उहलगा एकोयना utangwi natrago unap le kwak lei khuma le oine hingba taban natrabe de khu hingbai kari kanari haibo wahang ama atya le ki lao pa toina ta
9: ngai kho ngai kho unap le ani duna ngarang do la kwa uphok pam bi ni du ubadagi lucky pur gi yumre la khoi bu chu khi di chu chumro
4: ma khoi ni chu hingba pam na oi batai
5: akoi di shiba pam na si hairo
9: shiba pam do soro higai wa sana do hingi se
4: kamai na
9: karam sadhu sadhu na ti pandit pandit na ti unap lai na atai de nat ba ya de have do ut na khona do no hingba ya bre ki se kai no
4: ako ma khoi bu si barak ta hi on do na naranda baba khoram ma chak ni have do bu chumla ba sala ba
5: akoi talam na tumin sa khi ni chum ta re da na
9: ta re tha je ning de pai tha je bu di tum ta ra ni
4: Tazi terapi di hingui duri.
5: Hingui duri. Ayah, angang cak. Nak kau ini wajani tu ubra.
4: Aku jadi terima kasih.
9: Aku jadi terima kasih.
1: Angang sih nanti. Nampi wajani tu purga mangsa ini.
4: Tengah siapa?
1: Nara nol bapa kurang kripra, kekulo pisahnya kripra. Alai kau buka naik malung lagi.
9: Matam nane kamu saya. Kau suka yang tadi. Lai kurang besar betul dah. Boyai kau, ekau, yau boyai sukang dia, yau dia sukang dia. Wajani tu su. Saya siapa ya? Misak ni nanti aja bosun kami jadi. Nupi masa ni tu cuma, bakti lebih orang bayar ye. Isor dah kandi, mi dah kandi. Aku ini aja ni buat cuma. Kalau yang tiba lagi hai bni, nanti raga cuma nanti lagi. Ikan ni cawai bagi lembaning tu na. Hai bni, khambiram bosuai, khambiram tu bosuai ye. Kakak aku halaman na. Dunia asli dia bapak kakak. Agak buat tu deh.
1: Anu ke budi subuh. Aku ini ada satu payah jenar lah. Ibu sih bu. Santana bra mi dana bra mi oraga karam ba mi dani hanle re mi ba mi singse ki mana gande yei gadra natra ga mi dob sing tan thok gadra ama ji madna so mu mi hai bese ya ma khal la ni suri pi pa nati karam ba do noi goi re sa go dri sibo bhap da dab ni ne ba kun
10: adu ki bo hai ro di e dada ma sai ek ho na sangit mahavidyalo ni ghat laga Meteorologi kak angang singda tapi hendur bersibu. Bija caca caca nabra, nasraga lari bang lami tan masam nabra. Bahap mana tanah sana tahu ribu nak kini na.
1: Aduh budi baik kuno bapa. Aku isi lucky pur dal lari bra. Nasraga lucky pur na aku isi dal lari bra. Nasri hariga lucky pur hari bang minsi dal lamsi lari bra. Nasraga Lucky pura ber lamdu dah mingasil lahir ibra bahap tado bani.
10: Mingna pot kemana deh? Baban bu cehi tera Manipur dah lahir ura hai dina Manipur ini hai kedra, Lucky pur ini hai kedra. Nataga ising dasu kangbal dasu lahiba nauksiak ni hai kedro.
4: Nauksi ni hari ubda Manipur gila puiru mana ne? Parke sage, adu kota ni tu tanjir. Adu mingga mingga puse, yang tak terjadi dah.
5: Adu budie, ekor itu adalah primada swami hari bese.
4: Mana?
5: Ahan benda tangan tu malu orang mihai. Itai masjid tu na. Hausik sahju ki biasa lembu adalah si da. Mangi uk tu nipa mangi badu lembu mihai na. Yai lembu cai lembu ya.
9: Mingsi dia bai. Yang mau ni ngai ni. Puan dah bunuh ipa.
10: Namaskar. Narendra bapa kerumuh budie kali kali buat pemandai ya. Ming baka tunggu lepau, abdar kau itu.
4: Is, haja kere, drisha itu. Ming masih hook kere.
2: Born ini edik kau buka urut, amuk kecil tu gini.
5: Ah, ini gini macam siapa? Nuri tu kampung urut ya. Nungai lepau.
6: Nungai kekak, siapa yang tari? Kalau kau ini kalau yang labadi, amuk kena nungai langgani.
4: Aku ini sunda nak kau mang kere, hari ini kosong orang ini.
5: Karena amat talam dengan luar sakit, muksa hati dia tu.
6: Kosong. Kau ini baca kini hari ini khabar kau sakit, haja kere.
1: Ah, hoi. Nahau ini aja, kerana nungai hoba, patut berhati.
5: Aku yang hujung buah,
1: haha, baikun hoba buah.
10: Mana mana jadah masai, jadi dia waiku dona meninggal cete. Aduh bu, nahau ini aja, kami mukai nungai hoba, apa sunatte, patut bersunatte.
1: Aduh dia baikun hoba buah. Hal lekho isu, bertuan pangi mukai usop ya hoba, apa sunatte, patut bersunatte.
10: Nanti nanti.
9: Nahar orang thawai nuai terga saw bosu pati, saw dosu pati. Tanja saya itu napa harau bosu pati, harau dosu jadi.
4: Ozaga saatri ga pikini khangde, lay kurang berkhangde, sambil napa tu fahamusun nanti, fahamusun nanti.
2: Saatri saatri makai dah, iskar sancat pa, lam kumi napa, fahamusun nanti, fahamusun nanti. Makoi Marakta Ozayawa, Pabasunati, Patabasunati.
10: Money for the show. Is he come there, Jago, come there, like it, come there. The Bibo Wajana Satri Loba. Natraga, the Miri was Hatrora, Nupi Wajana, my own Patu Yamata. Mado, I have you, I Patti, have you, I
0: do give a day, Bekundo Babo. Hanubina, Pakanga, Leba. Hanuman and Leshabi Loba. Money Buddha, the Wedna, Yam, the time. Masi, I know some canbada. Mun here canbada. I ever see I, Patti ever see I.
6: Patta, Papa, have a sibu, me do it up. Samas it up. Samas the Hingli Basibu, me get up. Meaning Hingli Basibu, Samas it up. Was a mana, Sati, a malore, but the Saturday singer Sauvoy. Samas and Sauvoy. Loner, Lady, but I need to this honor. Makweni na samas bu sawu na jumbra samas na makweni bu sawu na jumbra
11: na ha masama ga ahala maga masama sana gyan ta na duna launa leina khre ganda bi ba tau khre maduda dharana sawaga ahalum na kakadro ahalun na sawaga dharana na kakadro no kadro
8: samas sida ahalun yauri naharun yauri sawgan ba kakkan ba wagan ba no kan ba yauri
12: Tabire, Radio Lila, Ngabongkhaw, Ahan Basaru, Lila Sanabi Kiba, Society Theatre Manipurki, Lila Kangbu.
13: Hello, Kungang.
14: Tha Kudingi Roibe Thangja, Kungangi Thawrum Da Sandokchaba Hello Kungang, Live Phone-In Program. Chaliba Tha Sigi Oina, Lakliba Thang Kuntaruk Thangja, Numidangi Pungtaruk Mini Nifu, Kungangi Thawrum Da Sandokchagani.
13: Thamjari Behiramna. Pau salak pa madilu selak pada section kita ba. Expert wenaling sin bigata ba. Kongban tabam Nimaisan Singh, Sit Analyst, Department of Agriculture, Government of Manipur.
14: Miam na studio ki telephone number 9362327078 ta call tau biraktuna. Thauram masi busaruk kya biyo.
13: Hello, Kungang.
12: Agas mani Imphal. Haujiga Muktabirasi Naharalgi Khonjal Thamjari Bahiram Current Affairs Expert on the Lingsin Bigadaba Arvind Salam Faculty Dr. Ambedkar Center of Excellence Manipur University Thorum Lantok Bigadabi Chaplina Vaishnav

0: हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। ये गली और ये दर है एफएम गोल्ड की और प्रोग्राम है हर सिंगार। आपके साथ मैं हूं विकास, स्वागत आप सबका।
1: ये

पर्दे पर नजर आते हैं प्रदीप कुमार और साथ में आती है नजर निशी। रेल में फिल्माया गया ये गीत लिखा था असद भोपाली ने। म्यूजिक इस फिल्म का तैयार किया था संगीतकार रवि ने और फिल्म का नाम था तू नहीं और सही। प्रोग्राम का अगला गीत पहुंचता है आप तक 1958 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अदालत से। लता जी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत और मदन मोहन साहब का करिश्मा।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, और आपके साथ इस सफर में मैं विकास। बीते दिनों किसी ने एक बेहद दिलचस्प सी बात मुझसे कही और मुझे पढ़ने में मिली। उन्होंने कहा कि विकास लगता है कि श्रीलंका से होकर आए हैं, और जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई, और वो इसलिए भी क्योंकि एक पल में मुझे समझ आया कि वो ये ऐसा क्यों कहना चाहते हैं। असल में इसका बैकग्राउंड अगर मैं ये बताऊं तो श्रीलंका में एक मशहूर रेडियो स्टेशन है और वो अपने अनसुने नगमों के लिए जाना और पहचाना जाता है, और अक्सर कुछ ऐसे गीत जब हम और आप सुनते हैं तो होता है ना, हम सबके साथ उस एक पुराने दौर को हम कुछ पल के लिए ही लेकिन जी जरूर लेते हैं। और उन जनाब ने भी यही बात कुछ ऐसे ही गीतों के साथ जोड़ दी जो शायद उस दिन मैंने आप तक पहुंचाए थे। प्रोग्राम का अगला गीत भी कुछ कुछ हमें उसी दौर में ले जाता है। फिल्म का नाम है फरेब। 1968 की ये फिल्म है और सुमन कल्याणपुर का ये गीत है। असद भोपाली ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इस फिल्म में संगीत दिया है।

लता जी की आवाज और लक्ष्मी प्यारे का संगीत, साहिर ने इस नगमे को लिखा और फिल्म का नाम था दीदार यार। पर्दे पर अगर नजर डालें तो वहां हमको टीना मुनिम और ऋषि कपूर की जोड़ी नजर आती है। गीत को देखेंगे तो पाएंगे कि ऋषि कपूर एक बुजुर्ग के गेटअप में नजर आते हैं और टीना मुनिम सफेद चमकदार कपड़ों में पियानो के सामने इस गजलनुमा गीत को गुनगुना रही है। अब की बात करें, यानी हाल फिलहाल की बात करें, तो पियानो और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स पर्दे पर दिखना ना कम हो गए हैं। जैसे हम पुराने गीतों में देखते थे ना, तो वहाँ कभी संतूर, कभी सितार, कभी हारमोनियम वगैरह दिख जाते थे और वो गीत के साथ ना जाते भी थे और गीत की रंगत भी बढ़ाते थे। बहरहाल, प्रोग्राम का अगला गीत इसी तरह के नगमे को, यानी कि जो भी गीत आपने सुना तुमको देखा, तो इसी गीत को कुछ कुछ अलग अंदाज में गुनगुनाता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said, with this objective, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approved provision of Kavach version 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division of Northeastern Railway. The cost of the project is over 250 crore rupees. The Railways Ministry said that the approved project will extend Kavach 4.0 coverage across the identified balance sections of the division, strengthening the safety infrastructure available for train operations. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge ROB on Udhna-Ukai-Songar section of Western Railway. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle has stated that India and Nepal have an opportunity to renew their partnership by building on the strong ties that already exist. Dr. Wagle said this while addressing an international seminar on reimagining India-Nepal relations in an emerging global order organized by the Research and Information System for Developing Countries in New Delhi today. India today dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. The External Affairs Ministry said that the relief material has been handed over to the Nepalese side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolences over the deaths in a road mishap in Madhya Pradesh's Agar Malwa district. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with business and market. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली शरद जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
0: वार्म वेलकम शरद
2: धन्यवाद प्राची धन्यवाद राजेश सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा अभिवादन
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर आइए उससे पहले सुने सुर्खियां
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर सिक्स्थ कंसेक्यूटिव वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ And U.S. stock market indices wrap up week on mixed note.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोल रहे हैं और अमेरिका के शेयर बाजार इस सप्ताह मिश्रित रुझान के साथ बंद हुए
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं कि सप्ताह के अंदर अंदर किस तरीके से हमारे शेयर सूचकांकों ने व्यवहार किया मार्केट का हाल कैसा था तो प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई भू राजनीतिक तनाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के माहौल को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क रखा इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 487 अंक यानी लगभग 0.7% गिरकर 74,295 पर बंद हुआ वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक यानी 0.2% लुढ़ककर 23,346 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान लगभग 0.2% की गिरावट आई क्षेत्रीय स्तर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रेल्टी और आईटी क्षेत्र में गिरावट रही वहीं एफएमसीजी हेल्थ केयर और मेटल में बढ़त दर्ज की गई अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 33 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.88 रुपये पर बंद हुआ और इसी बीच वेस्ट बंगाल से हमारे साथ बबलू जुड़ रहे हैं बबलू जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
3: हाँ मैडम
1: बबलू जी आपकी तरफ से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है आप प्लीज अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में आकर के हमसे बात करिए
3: क्या मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको
1: जी
3: हमें मेरा सवाल ये है मैडम भारत में रियल्टी सेक्टर जो भी बहुत डाउन चल रहा है उसका क्या फ्यूचर है आगे में क्या रियल्टी सेक्टर आगे और अच्छा करेगी या फिर वो बुरा हाल हो जाएगा रियल्टी सेक्टर का इंडिया में
2: बबलू देखिए रियल एस्टेट सेक्टर का आप पूछ रहे हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर अब पूरे देश में बबलू यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं करता है हम पूरे देश को कहें कि वो एक साथ आप जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हैं हो सकता है आप जहां रहते हो उस क्षेत्र में एक सैचुरेशन पॉइंट आया हो जिसकी वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो लैंड है अभी भी प्राची और राजेश को भी बताना चाहूंगा जो लैंड है जहां पर खासकर टाउन प्लानिंग हो रही है
1: जी।
2: जहां पर शहर एक्सपैंड करता है वहां पर अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए वो साबित हो रहा है कहीं कहीं जो अपार्टमेंट्स हैं जहां पर सप्लाई ज्यादा है बबलू जी वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्टैग्नेंसी आ गई है तो ये इसको हम यूनिवर्सली पूरे क्योंकि आकाशवाणी तो पूरे देश में जाता है तो मुझे लगता है मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो कि पूरे देश के लिए लागू हो तो वो बेहतर रहेगा। तो इसको हम यूनिवर्सली पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं कह सकते। ऐसे ही मैं उदाहरण के तौर पर आपको बबलू बताऊं कि जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, जो बहुत महंगे वाले घर होते हैं, उनमें कहीं रिसेशन नहीं है। बाकी ये आपको मैं इसका सिद्धांत बता देता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर कोविड के बाद से काफी बूम किया और उसके बाद इसमें एक एक प्लेटो फेस आता है, ये इसकी साइकिल है, धीरे ऊपर जाता है, फिर इसमें प्लेटो फेस आता है, फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन होती है। तो इसको हम साइक्लिकल बोलते हैं, ये मतलब एक एक एक पूरा का पूरा साइकिल है, पहले ऊपर जाएगा फिर फ्लैट होगा। तो कुछ हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जिस इलाके में आप हैं वहां पर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप निवेश की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो वैसे तो निवेश अपने आपके जो सलाहकार है उनसे करना चाहिए, पर आप किसी दूसरी स्टेट में जहां पर शहर चल रहा है वहां पर आप देख सकते हैं, शहर चलता है, आपको शायद जानकारी होगी शहर भी चलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग जाते हैं, अरे यहां तो मॉल बन गया, यहां तो मार्केट बन गई, तो पहले था नहीं। तो मुझे लगता है उसको उस दृष्टि से आप इसको देखें और किसी दूसरे अन्य जगह पर आप ट्राई करें, मे बी आपका नजरिया बदलेगा। बाकी ओवरऑल आपके इलाके में आपकी बात सुनकर लग रहा है ऐसे ही कि पर कुछ समय लगता है फिर उसको रिकवर करने।
0: जॉइनिंग अस फ्रॉम न्यू दिल्ली इज अमित झा। वार्म वेलकम अमित। Hello, Amit, can you hear us? I think we've lost touch with him.
4: Hello.
0: Yash, yeah, Amit?
4: Sir, आवाज आ रही है आपको?
0: बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछे अपना।
4: हाँ, सवाल सर। सर नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार अमित
4: सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लीजिए एनएससी या बीएससी का, नेक्स्ट में रोल ओवर हो रहा है, रोल ओवर सर आप जानते हो डेरिवेटिव का,
2: हाँ जी,
4: तो रोल ओवर अगर ज्यादा हो रहा है तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? और दूसरा सर, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या संकेत बताते हैं सर? धन्यवाद सर।
2: ओके, चलिए पहले आपने रोल ओवर का पूछा अमित, ये डेरिवेटिव्स में होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको उसको जब जो एक्सपायरी डेट होती है उससे हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ज्यादातर अमित देखा गया है, अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं तो रोल ओवर जब होता है, जब जिस तरफ आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट डेट पर आपको उसका उसके अनुकूल आपको नहीं लग रही है मार्केट, तो फिर आप उसको रोल ओवर करना चाहते हैं, वरना क्या होता है आपको फिर लॉस बुक करके बाहर आना पड़ता है। तो रोल ओवर यही बताता है, या फिर एक और केस में रोल ओवर होता है जहां पर जो ट्रेडर्स होते हैं बहुत बुलिश या बहुत बेरिश होते हैं, उनको लगता है कि अभी तो पूरा मुनाफा नहीं आया, अगले एक्सपायरी डेट पे और ज्यादा मुनाफा आएगा, ये भी कारण होता है रोल ओवर का। दूसरा आपने ओपन इंटरेस्ट पूछा, ओआई इसको बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट बताता है कि किसी पर्टिकुलर कॉल पर किसी पर्टिकुलर लेवल पर इस वक्त कितने ट्रेडर्स का ध्यान है, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक पर्टिकुलर लेवल पर बिल्डअप हो रहे हैं। क्योंकि आप ओआई पूछ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं अमित कि आप जानते हैं इसके बारे में कि कैसे जो ऑप्शन चेन होती है, अगर मैं ऑप्शन चेन के उदाहरण से लूं तो चेन में एक लेवल पर अगर ज्यादा ज्यादा ट्रेडर्स का वॉल्यूम बन रहा है उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है

0: है कि क्या इस लेवल पर बहुत सारे लोगों का इस समय ध्यान है, तो उसको फिर आप एक पैमाना मानकर आप अगला ट्रेड कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल बात पूछी अमित ने, मुझे मेरे लिए थोड़ा सा रेवलेशन है कि अमित जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं,
1: काफी
0: बहुत
1: इंटरेस्टेड
0: रेगुलर
1: है।
0: रेगुलर कॉलर है। पर थोड़ा अमित संभल के करा करिए, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है और कभी कभी क्या अक्सर धोखा भी दी जाती है, तो लॉट ऑफ पीपल बर्न देयर फिंगर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ अमित कि आप इसको ख्याल रख के करेंगे, ध्यान से करेंगे, और ये भी उम्मीद रखता हूँ ओआई और रोल ओवर आपको दोनों समझ आ गया होगा।
2: नई दिल्ली से हमारे साथ सतपाल जुड़ रहे हैं, महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो।
2: जी सतपाल जी, अपना आप सवाल पूछिए।
3: हाँ, कोले जी और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
3: मैं कोले जी की वीडियो भी देखता हूँ, गोल्ड वाली वीडियो डेली देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ।
0: जी थैंक
3: और
0: यू।
3: मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी जो लड़ाई चल रही है यूएस और ईरान की, इसके बीच में अभी गोल्ड का क्या सिचुएशन रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अब कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा आने वाले 2 साल में, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? थैंक यू।
0: चलिए, आपका पहला सवाल, यूएस ईरान की लड़ाई चल रही है तो गोल्ड का, गोल्ड में तो वैसे ही सतपाल जी बहुत हलचल चल रही है आजकल, ऊपर नीचे, पर अभी यूएस के फेड ने रेट्स बढ़ाए तो गोल्ड ने उसको अच्छा डाइजेस्ट किया, उसको उसको पचाया, और गोल्ड अभी जो हमारी फ्राइडे को रात की जो सिचुएशन है उसमें कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में काफ़ी बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक तो सतपाल जी गोल्ड की अच्छी है, काफ़ी शाइन के पहले ही बहुत चमकता है गोल्ड तो, और मुझे लगता है चमकने वाला है, और आपने लॉन्ग टर्म नज़रिया रख के चले, पर एक डिस्क्लेमर जो शुरू में राजेश ने पढ़ा था उसका ध्यान रख के। और दूसरा आपने पूछा कौन सा सेक्टर मिड कैप या लार्ज कैप में चलेगा, मार्केट्स के लिए यू नो मैं आई एम श्योर हम डिस्कस करते हैं इसको बाद में, मार्केट्स के लिए बहुत टफ टाइम आया है, मुझे तो कई दफ़े ऐसा लगता है मार्केट्स को किसी की नज़र लग गई है क्या हुआ है, क्योंकि 2024 के बाद से वो बिल्कुल निफ्टी ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया, अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो। अभी सेक्टर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, आप डिफेंस सेक्टर को देख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं सतपाल, पर थोड़ा सा मार्केट में संभल के चलने की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट अभी अमेरिका में जो सिचुएशन है, मार्केट्स हो क्या रहा है, या मैं एक एक मिनट आपकी इजाज़त से लेना चाहूँगा, मार्केट्स डोमेस्टिक फैक्टर्स को नहीं देख रही हैं, मार्केट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को देख रही हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो गई अमेरिका में क्या, तो थोड़े से जो अंतर्राष्ट्रीय जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन है सतपाल जी, बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है मार्केट में भी। बाकी आप डिफेंस और एनर्जी सेक्टर इस दो के आप नज़र रख सकते, क्योंकि आपने सेक्टर पूछा है तो मैं बता रहा हूं, बाकी मार्केट में बहुत फूक फूक के पग धरना जिसको कहते हैं वो इस समय सिचुएशन है। जी।
2: नई दिल्ली से हमारे साथ संजीव जुड़ रहे हैं, संजीव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हाँ नमस्कार कोहली साहब, नमस्कार टीम मार्केट मंत्रा।
0: नमस्कार संजीव, बताइए।
4: हाँ कोहली साहब, आपके आने का बहुत इंतजार रहता है हमें।
0: माय प्लेजर सर, मुझे आपसे बात करने का इंतजार रहता है, बताइए।
4: थैंक यू थैंक यू कोहली साहब। एक सवाल है, 2007 में हमने एक पेमेंट लिंक्ड फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया था
0: जी,
4: ज्वाइंटली
0: जी।
4: अच्छा, वो प्रोजेक्ट तो थोड़ा डिले हो गया, मगर उसका ओवर द ईयर कुछ 4-5 साल पहले हमें उन्होंने सो कॉल्ड पोजेशन दे दिया।
0: अच्छा,
4: प्रोडक्शन देने के बाद उसकी इंडस्ट्री भी हो गई
0: जी
4: उस एरिया में कंसर्न
0: जी।
4: अब उसको अगर हमने बेचना है तो उसका व्हाट यू कॉल फ्रॉम डेट ऑफ प्रोडक्शन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से कैपिटल गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गिना जाएगा, कैसे होता कैलकुलेशन?
0: देखिए संजीव जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं कि पहले कुछ लोग रजिस्ट्री मानते थे, कुछ पोजेशन मानते थे, पर जनरली जहां बिल्डर की अलॉटमेंट होती है तो ज़्यादातर जो केसेस हैं कोर्ट्स में और ट्राइब्यूनल में, वो जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होता है उस डेट से आपका आपका मालकियत मान लेते हैं, तो आपको जब संजीव जी इस पे जब लेटर मिला होगा अलॉटमेंट का, तो आप उस डेट से मान के चलेंगे, तो आप मेरे ख्याल क्योंकि 2007 का है तो मुझे लगता है आप शायद इंडेक्सेशन यूज़ करना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, पर आपको ये पता होगा कि इंडेक्सेशन यूज़ करते हैं तो 20% पड़ता है, और अगर आप बिना इंडेक्सेशन के करें तो 12.5% पड़ता है, तो मैं संजीव आपको ये भी सलाह दूंगा कि दोनों ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके देखें, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, पर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट से आप इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, मुझे ना जाने ट्राइब्यूनल में किसी में रजिस्ट्री बोला है, किसी में पोजेशन बोला है, किसी में अलॉटमेंट बोला है, पर ज़्यादातर कंसेंसस यही निकला कि इसको हम डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेते हैं। जी
1: Hina Prasad joins us from Bengaluru. A warm welcome, Mr. Prasad.
5: Hi, good evening, Market Mantra. This is Hina Prasad from Bangalore.

0: कि आप किसी अपने इलाके में जो आपके कोई एजेंट है उनसे आप संपर्क करें और संपर्क करके वो आपकी मदद करते।
1: दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़ रहे हैं। सतीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: गुड इवनिंग सर, कोहली साहब।
0: गुड इवनिंग
2: सर, मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में कुछ कर नहीं रहे, डेढ़ डेढ़ साल तक शेयर अटके रहते हैं
0: जी,
2: और ये लास्ट डेट क्या है सर पेपर शेयर फॉर्म की कन्वर्ट कराने की डीमैट में? थैंक यू सर।
0: लैब ग्रोन डायमंड्स, सतीश जी, अच्छा फ्यूचर है। मुझे निजी तौर पे एक दो इनाग्रेशंस थी लैब ग्रोन डायमंड्स के शोरूम्स की, वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने देखा वाकई में वो देखने में ओरिजिनल डायमंड की तरह दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा भविष्य है जिन लोगों को डायमंड का शौक है और वो ओरिजिनल डायमंड नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ देख सकते हैं।
3: प्राइस वाइज दे आर नॉट वेरी चीप।
0: नहीं, फर्क तो है, उतने महंगे तो नहीं है, इतने महंगे कैरेटेज पर डिपेंड करता है। और दूसरा दूसरा इनका एक और सवाल था सतीश जी का कि हाँ इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का इनका काफ़ी समय से सवाल रहता है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आपकी शिकायत बहुत दिन से बनी हुई है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक दो बार वहाँ होकर आएँ। हम जहाँ इस समय बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, उनसे संपर्क करें। नॉर्मली इतनी देर लगती नहीं है क्योंकि काफ़ी वहाँ पर प्रणाली सुदृढ़ है इस समय, पर मुझे नहीं पता किस कारण से आपका मामला वहाँ अटका हुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनसे तुरंत संपर्क करें। और एक ई निवारण ऐप है, सीपी ग्राम्स करके ऐप है, उन पे भी आप डालें, वहाँ पर शिकायत किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो तो आप डाल सकते हैं। तो कोशिश करें सतीश जी, हम तो यही कह सकते हैं कोशिश करें, अब यह तो स्पेसिफिक मामला हमें पता हो तो हम उसकी गहराई में तह में जाके आपको सलाह दें, तो आप ट्राई करिए, उम्मीद करते हैं कि काम बनेगा।
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव आयुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं की शिक्षा और कौशल बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
4: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: मुंबई से हमारे साथ SJ पवार जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: हेलो
1: जी,
5: मैं सीनियर सिटीजन हूँ
0: जी।
5: हाँ, मेरा इंटरेस्ट इनकम 2 लाख है
0: जी,
5: और शेयर बेस्ट में 3 लाख कमा रहा हूँ
0: जी,
5: प्रॉफिट हुआ
0: जी,
5: तो मुझे टैक्स शेयर पे गिरने है या नहीं, क्योंकि 12 लाख का तो अभी ये हुआ ना लिमिट मैक्सिमम
0: जी,
5: उस बारे में जानकारी चाहिए।
0: देखिए पवार साहब, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में जो शेयर्स का गेन होता है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो आपका मैं अगर कैलकुलेट करके देखूं तो 4 लाख से ऊपर जा रहा है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो न्यू रेजीम में है, तो क्योंकि वो पवार साहब चार लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 लाख से ऊपर में, और राजेश और प्राची को भी बताऊं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, बेसिक एग्जेम्पशन में कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो कवर हो जाता है ऊपर, क्योंकि कैपिटल गेन पर एक स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है, तो इसलिए अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर जा रहे हैं तो भले ही आप 12 लाख से कम हैं तो आपको फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं पवार साहब आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो स्लैब के हिसाब से नहीं लगता है, वो अलग रेट पर लगता है, तो इसलिए आपको मेरे विचार से पवार साहब आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए जी।
1: अन्य खबरों में, नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इस प्रारूप के अंतर्गत 2000 रुपए तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। इस प्रारूप का व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन के लिए UPI पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, चाहे कितनी भी रकम ट्रांसफर की जाए। 75,000 रुपए और उससे ज्यादा के लेन देन के लिए MDR की सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपए होगी। 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लागू किया जाएगा। महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि MDR क्या है, आप इसे विस्तार से हमारे श्रोताओं के लिए आप समझाइए।
0: मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं और ये वेंडर के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। पहले भी था, क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज करते हैं उसमें 1.5%, 2%, 2.5%, कुछ बैंक तो 2.5% लेते हैं, तो उसमें वेंडर को एक चार्ज देना पड़ता है जो कि उसको वो सुविधा ये ग्राहक को देता है, और ग्राहक बहुत सारे नए ग्राहक उसको मिलते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो लेके व्यक्ति आता था
1: जी।
0: तो उसके पास कैश नहीं होता था, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के जरिए बैंक एक चार्ज लगाते हैं। कुछ इसी प्रकार का UPI पे अब ये नया आया है, क्योंकि 10 साल से UPI चल रहा था और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसमें नई नई फीचर्स लाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको मॉडर्न बनाने के लिए एक बोझ पड़ रहा था। पूरा की पूरी जो प्रणाली थी वो प्रणाली स्वचालित होनी चाहिए। उसमें 18,700 करोड़ रुपए बीच में प्रणाली खर्च कर रही थी, 2,000 करोड़ के आसपास जो है वो सरकार के भी खर्च हो रहे थे, और मुझे लगता है 10 साल हो चले थे, तो क्योंकि 10 साल हो चले हैं तो इसलिए उस पर अब ये MDR लगाया गया। और उम्मीद कर रहे हैं कि वेंडर्स इसको देंगे, प्रावधान तो यही है प्राची कि इसको वेंडर्स देंगे अपने पास से, उनका देना बनता है और नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है।
1: जी।
3: Major US indices displayed a mixed performance yesterday. The Nasdaq Composite Index rose 0.4% and the S&P 500 added 0.2%, led by gains in semiconductor stocks. Conversely, Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. Meanwhile, markets wrapped up a volatile week on a mixed note as investors navigated rising treasury yields, elevated oil prices, and Federal Reserve's rate hike. For the week, the Dow posted third straight weekly decline, sliding 1.7% to mark its worst performance since March. The S&P 500 fell marginally by 0.1%. In contrast, Nasdaq rose 0.7%.
1: दिल्ली से हमारे साथ आरएस दहिया जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: मैडम नमस्कार, कोहली जी को स्पेशल नमस्कार।
0: नमस्कार दहिया सर,
6: मेरा क्वेश्चन ये है कोहली साहब से कि स्मॉल इन्वेस्टर्स आर गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम फॉर लास्ट 1.5 years।
0: जी,
6: व्हेन विल आर निफ्टी इंडेक्स एंड BSE सेंसेक्स will reach its all-time high level or somewhere closer to that, maybe plus 15% from here.
3: I wish we knew.
0: All right. well, if wishes were horses, we would have ridden them, as they say. Dhaiya Saab, it is true that it's been almost 2.5 years. You rightly said that, we've been the indices. But I feel that people who are, you are a very mature investor, Mr. Dahiya, and I feel these are the cycles which normally come in any investor's, overall career, I would say, overall span, should I say. So I think let's keep our fingers crossed, and we need to see that the geopolitical and geoeconomic situation around the world, Mr. Dahiya, is not letting the market go up. The Indian parameters are fine, but then somehow the markets are looking at, the global picture, the global, crude oil, bond yields, crude dollar index, and so on and so forth. So let's hope for the best. I think once the war ends and Strait of Hormuz and Bab al-Mandeb, these routes open, the crude oil prices cool down, and we will see the market. So I think patience is a virtue, I would say. So aapne itna dhairya rakha hai, Dahiya saab, to thoda sa aur dhairya rakhe. Baki aapke muh mein ghee shakkar 15% kab badhegi? Hum to kehte hain ki jaldi badhe, aapki baat, aapke vachan satya hon.
3: US President Donald Trump has signed a law expanding sanctions against Russia and providing for tariffs of up to 100% on major buyers of Russian oil and gas, while extending U.S. sanctions authority against Iran for 5 years. The White House said the measure authorizes and expands statutory sanctions, tariffs, and prohibitions on Russia. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. During the week, Brent crude November futures dropped 0.7% to settle at $103.87 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures added 0.2% to end at $100.30 per barrel. Oil prices eased in the last few trading sessions as markets anticipated

0: stated that the closure of Saudi Arabia's key pipeline will have a smaller impact on supplies than initially feared. So, carry on.
1: शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो समय की सीमा है भाई,
2: जी
1: तो आज हम इतना डिस्कस कर पाए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है.
0: थैंक यू शरद
1: फॉर
0: बीइंग
1: विद
0: अस.
2: थैंक यू सो मच.
0: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर सिक्स कंसेक्यूटिव वीक. प्राइम मिनिस्टर सेज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ. एंड यूएस स्टॉक इंडिसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. टिल टुमारो, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: यू आर लिसनिंग टू अ रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑफ टुडेज मार्केट मंत्रा प्रोग्राम, ओरिजिनली एयर्ड एट 6:30 PM.

11:41 हो चुके हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वागत है आप सबका प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रोग्राम का यह आखिरी गीत सोनू निगम की आवाज के साथ छोड़े जा रहा हूँ आपको, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखिएगा अपना ख्याल और उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने उधना उकाई सोनखंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों

भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है अंग वस्त्र। ये कहानी आपके लिए लिखी है नीलम ए कुमार ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी अंग वस्त्र।

राज आज मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना, मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। भाई की शादी जो आ रही है और होने वाली भाभी के लिए कुछ साड़ियाँ और ड्रेसेस भी चाहिए मुझे, राज की पत्नी ने किचन से बाहर आते हुए कहा। ठीक है, मैं आज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा और फिर चलेंगे। वैसे जाना कहाँ है? अरे ये जो मार्केट है ना, यहीं एक बहुत मशहूर और बहुत अच्छा बुटीक है, उसका नाम है अंग वस्त्र। मेरी फ्रेंड बता रही थी दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं वहाँ कपड़े खरीदने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और वैरायटी है उनके पास। अब मैं सोच रही हूँ वहीं चलते हैं।

राज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ गया। कुछ आधे घंटे में ही वो बुटीक में पहुंच गया जिसका नाम था अंगवस्त्र। एक आलीशान बुटीक, 50-60 वर्कर तो थे ही उनके पास। एक से बढ़कर एक ड्रेस, साड़ी और लहंगे टंगे हुए थे शोकेस में, बहुत ही मनमोहक डिजाइन। राज की पत्नी एक साड़ी काउंटर पर जाकर साड़ी देखने लगी। तभी बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की महिला बाहर उतरी। गोरा रंग, काले लंबे बाल, शिफॉन की सफेद साड़ी, हाई हील और आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए। वो जैसे ही बुटीक में दाखिल हुई, सारे वर्कर्स और मैनेजर खड़े होकर उसको ग्रीट करने लगे। राज ने एक सेल्समैन से पूछा, ये कौन है? तो वो बोला, अरे यही तो है इस बुटीक की मालकिन। राज ने उस महिला की ओर मुड़कर देखा, जैसे ही उसने अपने सनग्लासेस उतारे, राज देखता ही रह गया। मधु, तुम? मधु ने राज को पहचान लिया। राज को देखकर वो बहुत विचलित हो गई। वो अपने केबिन में चली गई जहां उसका ऑफिस था। मधु आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठ गई और अपने अतीत की यादों में डूब गई।

मधु अपना 12वीं का परिणाम देखकर खुश हो गई। सीबीएसई के 12वीं में उसने टॉप किया था। बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी मधु। परिणाम देखकर वापस घर लौटते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। अरे इतना खुश क्यों हो, पास हो गई क्या? पास नहीं माँ, मैंने टॉप किया है, मधु ने खिलखिलाते हुए अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। मधु की माँ की आंखों में आंसू छलक आए। मधु जब 5 बरस की थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी माँ एक सरकारी स्कूल में आया का काम करती थी। बड़ी ही कठिनाइयों से वो मधु और उसके छोटे भाई का पालन पोषण कर रही थी। रात को लोगों के कपड़े सिल सिल कर वो किसी तरह से गुजर बसर करती थी। दिन भर मेहनत कर वो उनकी शिक्षा, खान पान और सुख सुविधाओं को किसी तरह से पूरा कर रही थी। मधु बहुत ही खूबसूरत किशोरी थी। पतली, लंबी, तीखे नैन नक्श, लंबे घने और घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें थी उसकी। बहुत ही मनमोहक लगती थी। स्कूल समय से ही मधु एक लड़के राज को पसंद करती थी। राज उसके पड़ोस में ही रहता था। वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ता था। स्कूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट में राज ने मधु की मदद की थी। आज राज ने मधु को मिलने एक बाग में बुलाया था। ठीक 5 बजे वो वहां पहुंच गया और एक हार सिंगार के पेड़ के नीचे बैठकर मधु का इंतजार करने लगा। नीचे छोटे छोटे सफेद फूल झड़ रहे थे, मानो जैसे इस पेड़ के फूल मधु और राज का स्वागत कर रहे हों। तभी वहां मधु आ गई और उसके पास बैठ गई।

सुनो राज, पता है मैंने आज परीक्षा में टॉप किया है। राज चुपचाप बैठा था, खोया खोया सा। क्या तुम्हें यह सुनकर खुशी नहीं हुई? चुप क्यों हूँ, बोलते क्यों नहीं? मधु, तुम जानती हो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और उनकी दुकान तो है ही। वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़कर उनकी दुकान में हाथ बटाऊं। साथ ही वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता तक देख लिया है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, पर उन्होंने मेरी एक भी न सुनी। अगले महीने की 11 तारीख को मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सुनते ही मधु की आंखों में आंसू आ गए, वो कुछ नहीं बोल पाई। राज भी कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों ना हम कहीं दूर चले जाएं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। राज, उसे बहुत मुसीबतें उठाकर मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण किया है। राज ने मधु को समझाया, मधु देखो, हम दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अब हार कर मधु ने राज की बात मान ली। अगले दिन मधु घर नहीं लौटी। जब मधु बहुत देर तक घर नहीं आई तो उसकी माँ व्याकुल हो उठी। सब जगह ढूंढा पर मधु कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी? रात के 8 बज चुके थे। मधु की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसने पड़ोसियों की सलाह मानकर मधु के गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी और साथ में उसके मामा को भी सूचित कर दिया।

इधर मधु और राज एक अस्पताल के बाहर बैठे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। रात के 12 बज चुके थे। राज बोला, मधु चलो घर वापस चलते हैं। बहुत बड़ी गलती की घर से भागकर। क्या कह रहे हो तुम? मैं अब घर वापस कैसे जाऊं? किस मुंह से जाऊं? अपनी माँ का सामना कैसे करूं? वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे कारण उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग ताने मारेंगे। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे। नहीं नहीं राज, मैं वापस घर नहीं जा सकती। तो फिर ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे भरोसे पर ही मैंने अपना घर छोड़ा है। तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। मधु ने ऐसा कहकर राज का हाथ कसकर पकड़ लिया। राज को उम्मीद थी कि मधु आएगी तो वो अपनी माँ के कहने और कुछ ना कुछ रकम लेकर जरूर आएगी। पर जब उसने देखा कि मधु के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसे समझ में आ गया कि आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। उसने बड़ी निर्दयता से मधु से अपना हाथ छुड़ाया और अपने घर वापस चला गया।

इधर अस्पताल के पास मधु को रोता देख एक आदमी उसके पास आया और इस वक्त यहाँ होने और रोने का कारण पूछा। मधु ने सारी बात रोते रोते उस आदमी को बता दी। कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है, मेरा परिवार भी वहीं रहता है। इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ कैसे वक्त बिताओगी? मेरे साथ चलो, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मधु पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर जब उस आदमी ने भरोसा दिया तो उसके साथ चल दी। जैसे ही उस आदमी के घर पर पहुंचे तो मधु ने देखा कि वो तो एक छोटा सा कमरा था, वहां तो परिवार का कोई सदस्य नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपका परिवार किधर है? मधु ने थोड़ा घबरा कर पूछा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, उसने मधु को धक्का मारा और वो जमीन पर जा गिरी। उस आदमी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। मधु को समझ में आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इधर मधु के मामा ने राज को बुलाकर अपनी पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि मधु को उसने कहां छोड़ा था। फिर मधु के मामा ने उस एरिया के आसपास मधु को ढूंढना शुरू किया और 2-3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मधु के मोबाइल फोन को ट्रैक कर उसको बचा लिया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। मधु को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। मधु ने अपनी आप बीती माँ को बताई और उससे लिपट गई। माँ ने मधु को गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी बिलख बिलख कर रोने लगी।

मधु का दिल टूट चुका था। कहां वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर अब उसके सपने बिखर चुके थे। समय बीतता गया, मधु को पता चल गया कि राज की शादी एक बहुत अच्छे खानदान में बहुत सुंदर और सुशील लड़की से हो गई थी और वो खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर मधु की माँ ने भी अपनी बेटी की शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन मधु ने साफ इनकार कर दिया। बोली, माँ मेरा भरोसा अब इन संबंधों से उठ गया है। तो क्या उम्र भर ऐसे ही बैठी रहोगी? इतना लंबा जीवन है, अकेले कैसे काटोगी बेटा? माँ, जीवन में शादी ही सब कुछ नहीं है, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मधु ने फैशन डिजाइनिंग का डिग्री कोर्स किया और एक डिजाइनर बन गई। बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का काम जानती थी। मधु की माँ पहले से ही सिलाई के काम में होशियार थी। ऐसे कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसने अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का, कढ़ाई का और काज बटन का काम जानती थी। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा, कई महिलाओं को काम मिलने लगा, बहुत सारे कारीगर उसकी दुकान से जुड़ गए। इसमें उसको अपनी माँ की बहुत सहायता मिली। उसका बुटीक अंग वस्त्र धीरे धीरे प्रसिद्ध हो चला था। मधु ने दिन रात मेहनत कर अपने उस छोटे से बुटीक को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज अंग वस्त्र पूरे शहर में जाना माना बुटीक बन चुका था। दूसरे शहरों से भी लोग वहां खरीदारी करने आने लगे थे। उसके बुटीक के कपड़े दूसरे शहरों में और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे थे। आज मधु एक संपन्न और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। मैडम देखिए, ये ड्रेस तैयार हो गई है, ठीक है ना? अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है तो बाकी ड्रेसेस भी बनने भेज देंगे। ये ऑर्डर हमें जल्दी से जल्दी डिलीवर करना है, मधु के मैनेजर ने मधु से कहा। मधु ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और ड्रेस देखकर बोली, हाँ हाँ एकदम परफेक्ट, आप ऑर्डर तैयार करवाइए। वो उठ खड़ी हुई अपनी पूरी हिम्मत और जोश के साथ। मधु ने बाहर झांका तो देखा राज मुंह लटकाए हुए उसके बुटीक अंग वस्त्र से बाहर जा रहा है। उसके चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि अब वो एक सशक्त मधु का सामना भी कर पाए। मधु जानती थी कि उसने अपने जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। ऐसी ताकत जिसके बल पर वो आज जमीन से उठकर आसमां तक पहुंच गई।

कितनी ही ऐसी लड़कियां होती हैं दोस्तों, जो जीवन में कठिनाइयों के बाद हिम्मत हार जाती हैं। याद रखिए, तरह तरह की जो कठिनाइयां होती हैं वो हमारी परीक्षाएं लेने के लिए ही आती हैं। यदि आप हिम्मत बनाए रखेंगी तो यकीन मानिए, आप दुनिया को जीत सकती हैं। ये कहानी कुछ ऐसा ही हमें सिखाती है, किसी भी परिस्थिति में जीवन के दुखों और परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंगवस्त्र, जिसे आपके लिए लिखा था नीलम ए कुमार ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, इसको समेटने की इजाजत दीजिए रश्मि कुकरेती को। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20

0: ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनखड़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इसका मकसद अवैध और तय समय से ज्यादा समय तक रुके विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके अप्रवासन की स्थिति की जांच करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करना था। इस सिलसिले में 150 पुलिसकर्मियों की कुल 25 टीमें बनाई गई और उन्हें कुल 43 जगहों पर तैनात किया गया। अभियान के दौरान 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और उनकी जांच की गई। इसमें 31 नाइजीरियाई, 4 युगांडा के, 3 तंजानिया के और 2 आइवरी कोस्ट के नागरिक थे। अभियान के तहत 10 विदेशी नागरिकों के खिलाफ देश से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi. 3-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. 3-day witness 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging, equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnaw said, India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
2: India has dispatched a fresh tranche of 11 tons of relief material to Nepal, including medicines, forensic supplies, tents, hygiene kits, sleeping bags and other essential supplies. External Affairs Ministry said that the relief material has been handed over to the Nepali side. This was the 9th Indian Air Force plane carrying relief material to support Nepal's recovery. The Nasha Mukt Yuva for Viksit 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will hold a nationwide youth mobilization drive today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaro will be organized at 1,067 locations, including 471 district Nai Bharat offices and 596 partner organization venues across the country. The event will serve as a significant nationwide movement of youth participation, bringing together Nai Bharat, partner organizations and young people around a shared commitment to healthier choices and Nasha Mukt future. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured 3 major posts in the Delhi University Students' Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Riya Chavdi secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. Meanwhile, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of vice president. The Election Commission will hold special camps across all polling station locations in the national capital today. The day-long drive aims to assist citizens with fresh inclusions, objections or proposed inclusions, or deletions of name in electoral rolls and corrections to particulars in the electoral rolls. Booth-level officers will assist people with Form 6 for new registration, Form 7 for objections or deletions, and Form 8 for corrections or updates. The 20th Asian Game 2026, which was opened at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines this morning. Tech ball player Quincy D'Souza will compete in the bronze medal match against Shitan Zuina Sakamoto at 6:30 a.m. Indian time. Later, Indian shooters Alan Valaravan, Sonam Muskar and Vidar Savanil will aim for podium finishes in the women's 10-meter air rifle event at 6:15 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुनाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

वैसे कितनी अच्छी भी फीलिंग होती है ना जब किसी इंसान की वजह से हम मुस्कुराते हैं और कोई इंसान हमारी वजह से मुस्कुराता है ना। गीत की बात करें तो आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, और फिल्म का नाम था पतीता, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म 1953 में आई थी और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था अमिया चक्रवर्ती ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, उषा किरण, आगा और ललिता पवार ने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

इसे बिच्छू ने इश्क का खुमार कहते हैं। गीत आप सुन रहे थे मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर और बन्ना डे की आवाज में। संगीत सलील चौधरी का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे बिमल रॉय। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जॉनी वॉकर ने। इस फिल्म को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में।

बार बार देखो नहीं, बार बार सुनो, क्योंकि हम बोलते हैं आप ही के लिए। गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम चाइना टाउन, संगीत रवि का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण किया था शक्ति सामंता ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शम्मी कपूर, शकीला और हेलेन ने। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप ही के लिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 3 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म उजाला से। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक क्राइम फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी शमी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला चिटनिस और टुनटुन ने। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था नरेश सैगल ने। और अभी जो गीत मैंने आपको सुनवाया था, इस गीत को पिक्चराइज किया गया था शमी कपूर और माला सिन्हा पर। इस फिल्म के संदेश की बात करें तो ये इस फिल्म ने संदेश दिया कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, इसलिए जिंदगी में हमेशा ईमानदारी करते रहिए। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है मुकेश की आवाज में, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और संगीत था चित्रगुप्त का, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1961 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में अभिनय किया था अजीत, बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मन्ना डे की आवाज़ में और फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मतदाता सूची में नोटिस दिए जाने की खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनका नाम अद्यतन व मान्य कर लिया गया है। इसे 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाली शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आयोग ने पारदर्शी भागीदारी वाली और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज इलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। पुरुष हॉकी टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सुबह 11:30 बजे इंडोनेशिया से भिड़ेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government is consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
1: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe recognized startups tier 2 aur tier 3 shaharon mein hai. Yani aaj gaon, kasbe aur chote shahar ka yuva bhi भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है.
2: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up to the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnav said that India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
2: Indian Railways has approached coverage 4.0 on 607.7 route kilometres of the Lucknow division at a cost of over 250 crore. The project will expand coverage 4.0 coverage and strengthen train safety. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road over bridge on Udna-Ukai-Songad section of Western Railway. While electronic interlocking will be installed at seven stations in the Solapur division at a cost of over 200 crore rupees. Railways has also approved a project worth over 142 crore rupees to upgrade the electric traction system on the Savalyapuram-Guntur section. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will hold a nationwide youth mobilization drive today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroh will be organized at 1,067 locations, including 471 district My Bharat offices and 596 partner organization venues across the country. The event will serve as a significant nationwide moment of youth participation, bringing together My Bharat partner organizations and young people around a shared commitment to healthier choices and a Nisha Mukt future. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured three major posts in the Delhi University Students Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the president post for president, while Riya Chavri secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. Meanwhile, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of vice president. The 20th Asian Games 2026, which has opened at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines this morning. Tech ball player Quincy D'Souza will compete in the bronze medal match against Japan's Yuina Sakamoto at 6:30 a.m. Indian time. Later, Indian shooters Elavenil Valaravan, Sonam Muskar and Vidar Savanod will aim for podium finishes in the women's 10-meter air rifle event at 6:15 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

कैसे कहूँ कि याद आ रही है कि तुम्हें भी आने लगे मेरी उतनी ही याद। कैसे कहूँ कि याद आ रही है कि तुम्हें भी आने लगे मेरी उतनी ही याद। जितनी कितनी बार कहूँ चले आओ, कितनी बार कहूँ चले आओ बिना ये सोचे कि क्या कहेगी ये दुनिया। स्वादिष्ट प्लेव एक प्लेगा हर्ट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 18 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

वैसे गाने से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज का प्रोग्राम किस दिशा में जाने वाला है। जी हाँ, प्यार की गलियों में, यानी साजन की गलियों में। तो चलिए, फिर देर किस बात की। अगला गीत आप ही के लिए।

ये शब्बा खैर का नहीं बल्कि जुड़ने का वक्त है, तो जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो दिल एक साथ सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

कितनी खूबसूरत बात है ना कि फूल कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर मन हमारा किसी अपने से मिलने का कर रहा हो तो फिर बाकी चीज़ें फीकी लगने लगती है ना। और जब बात हो साजन से मिलने की तो इंतज़ार की घड़ियाँ और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। चलिए, जब तक साजन से मुलाकात नहीं होती हम साजन को ख़त लिखते हैं। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसा बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर जाता है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 34 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

वैसे ये बात तो सच है कि किसी किसी की आंखों में हमें इतना प्यार मिलता है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आंखें इतना कुछ कह देती हैं, एक नज़र मिलती है और दिल की न जाने कितनी बातें बयां हो जाती है। और शायद इसीलिए ही मोहब्बत में कहा जाता है कि ज़बान की आंखों से ज़्यादा आंखों की बातों का ज़्यादा मतलब होता है, महत्व होता है। गीत अब तक पहुँच रहा है अगला, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि

0: देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में कॉर्फबॉल प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में कॉर्फबॉल के प्रति बढ़ता उत्साह देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल युवाओं के लिए नए रास्ते खोलते हैं, सेहत और मिलकर काम करने की भावना को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is the world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi. The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. The three-day witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging and equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है 3:11 और 18 सेकंड। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा धवन के साथ और रूपा आपके लिए लाई है बेहद ही हसीन पलों के बहुत ही खूबसूरत से गीत, और ये गीतों से सजा गुलदस्ता आप सुन रहे हैं अपने ही चैनल, पसंदीदा चैनल पर, आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो बहुत ही प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।

साथियों, 60 के दशक के गीतों की लोकप्रियता आज भी अपने चरम पर होने की एक बेहद ख़ास वजह है। वो वजह है उसका बेहतरीन संगीत, जिसे हर प्रशंसक दिल से अपना कर उसके सुरों में डूब जाते हैं। यही कारण है कि इन गीतों का जलवा दशकों के बाद भी आज कायम है हम सबके दिलों में। समय की दीवारें तोड़कर ये गीत आज भी अपनी खुशबू से सबको ताज़ा तरीन कर देते हैं। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक और लाजवाब गीत, जिसे हम शामिल कर रहे हैं अनाड़ी फिल्म से, मुकेश साहब और लता जी के स्वर में।

दो दिलों का मिलना और मुलाकात की खुमारी ऐसी कि मुलाकात के बाद उनकी बातें यादें बनकर एक दूसरे के कानों में गूंजने लगती हैं। उस मुलाकात के बाद क्या हुआ, क्या बातें हुई, अक्सर दिल ये भी भूल जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमराही कार्यक्रम में। समय हुआ है 3:37 और 52 सेकंड। आप हैं हमराही में रूपा के साथ और लुत्फ ले रहे हैं कुछ मधुर से तरानों का। अगला गीत आप सभी के लिए गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफी साहब और शारदा जी की आवाज़ में।

साथियों, फिल्म जगत में प्यार की रोमानियों को दर्शाने के लिए अथक प्रयास किए जाते थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। नायक नायिका जब पेड़ों के इर्द गिर्द झूमते हैं, गाते हैं, तो वो नज़ारा कुछ और ही खास रंगों से भर जाता है। ये नज़ारा दर्शकों को और भी मोहित कर देता है। फिल्म महबूबा का ये गीत लता जी और किशोर साहब की आवाज़ में।

तेरे बिना ये ज़िंदगी एक उल्फत सी लगती है, तेरे बिना ये ज़िंदगी एक उल्फत सी लगती है, लम्हे की जुदाई मुद्दत सी लगती है। इतने वक्त बाद मुझे महसूस हुआ कि हर पल तेरी ज़रूरत सी लगती है।

सफर कितना भी लंबा हो, अगर साथ दो दिलों का सच्चा हो तो बातें कभी खत्म नहीं होती। दो दिल एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं।

तू दूर होकर भी इतना पास लगता है, दिल के हर कोने में तेरा एहसास रहता है। जी हाँ, वैसे हम तो आपके दिल के करीब रहते ही हैं, और इसके लिए हमें और आपको कोई सबूत नहीं चाहिए। जी हाँ, प्यार भरा रिश्ता, सच्चा रिश्ता एक अलग ही दुनिया को कायम करता है। हमराही का सफ़र फिलहाल इतना ही। अभी रूपा विदा लेती है, अरुणिमा के सफ़र पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अब से कुछ ही देर में सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ. वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकें, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने विवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। लोग नया नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6, प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और मतदाता सूची के विवरण में सुधार या अपडेट के लिए फॉर्म 8 जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बारे में मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पंजीकरण अधिकारी मामले की सुनवाई के दौरान नोटिस में शामिल सूची के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भी विचार कर सकते हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
1: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe recognized startups tier 2 aur tier 3 shaharon mein hai. Yani aaj gaon, kasbe aur chote shahar ka yuva bhi भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
2: Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi yesterday. The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. The three-day witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging, equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi yesterday, Mr. Vaishnaw said, India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
2: Finance Minister Nirmala Sitharaman attended the concluding session of the first meeting of the Conference of State Finance Ministers and Finance Secretaries of States and UTs. The conference was held on the theme Financing India's Journey Towards Viksit Bharat. The Finance Ministry said in a social media post that the sessions covered key themes such as the macroeconomic outlook, financing agricultural transformation and financing the energy transition. The Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat, 100 Weeks Nasha Mukta Yuva Abhiyan, will hold a nationwide youth mobilization drive today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroh will be organized at 1,067 locations, including 471 districts My Bharat offices and 596 partner organization venues across the country. The event will serve as a significant nationwide movement of youth participation, bringing together My Bharat partner organizations and young people around a shared commitment to a healthier choices and a Nasha Mukt future. The Election Commission will hold special camps across all polling station locations in the national capital today. The day-long drive aims to assist citizens with fresh inclusions, objections for proposed inclusions or deletions of name in electoral rolls and corrections to particulars in the electoral rolls. Booth-level officers will assist people with Form 6 for new registration, Form 7 for objections or deletions, and Form 8 for corrections or updates. At the 20th Asian Games 2026 in Japan, Indian athletes will begin their medal campaign across several sports this morning. Tech ball player Quimsy D'Souza will compete in the bronze medal match against Japan's Yuini Sakamoto at 6:30 a.m. Indian time. Later, Indian shooters Elave Nilwalarivan, Sonam Muskar and Vidar Savinod will aim for podium finishes in the women's 10-meter air rifle event at 6:15 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

तारों की छिटकती चांदनी में अरुणिमा कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 4:11:25। आप हैं इस सफर में, इस खूबसूरत से सफर में अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ अब्दुल्ला फिल्म से, जिसे हम शामिल कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के स्वर में।

अरुणिमा में एक नई शुरुआत, ऊर्जावान से भरा उजाला, तैयार हैं हम सकारात्मकता और उम्मीदों का कारवा लेकर। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए इसके प्रकाश के साथ मन के हर कोने को खुशियों के उजालों सा प्रकाशित कर दें, ऐसा प्रकाशित कर दें कि ये इतना हसीन लगे कि जिंदगी का रूप ही अलग सा निखर कर आए।

साथियों, हमारे दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच का प्रभाव बहुत गहरा असर डालता है। अब सोचिए ना, जब हम किसी भी बात को लेकर मायूस हो जाते हैं, तब किसी का एक ऐसा शब्द या वाक्य हमारी हताशा को एक नई उम्मीद में बदल देता है। फिलहाल आपको सुना रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत लता जी और किशोर साहब के स्वर में, फिल्म दासी।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं अपने ही मनपसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:33 और 57 सेकंड।

ये सच है कि सबकी चाहत कभी पूरी नहीं होती। ये भी सच है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बस जितना है उसके लिए शुक्रिया और आगे बढ़ने की कोशिश करना ही जिंदगी का नाम है। किसी ने खूब कहा है, हर कार्य या हर चाहत मुश्किल जरूर होती है, पर मुमकिन जब होती है तो एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, और वो खुशियों की बहार होती है समय।

हम लोग जिंदगी में अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य सोच कर रखते हैं कि हमें ये लक्ष्य पाना है, और लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफें भी उतनी बड़ी होंगी। इसलिए लक्ष्य से ध्यान ना हटाकर बाधाओं को पार करते रहना ही है, और आगे बढ़ने से हमारी जिंदगी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। सुन रहे हैं आप अरुणिमा कार्यक्रम अपनी दोस्त रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बातें हो रही हैं सकारात्मक विचारों की, जुड़ रहे हैं हम सकारात्मक रूप से इन बातों से, और साथ ही साथ आपको सुनवा रहे हैं कुछ हसीन नगमे।

सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, चुनौतियों से हारना ये नहीं हमारी पहचान। जी हाँ, माना कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अक्सर चुनौतियों का सामना करके ही हम आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सुनते हैं काजल फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर और आशा जी के स्वर में।

मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जी हाँ, हौसले बनाए रखिए और प्यारी सी एक मुस्कान भी बनाए रखिए जो आपको हिम्मत देगी आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल अरुणिमा का सफर यहीं तक, रूपा विदा लेती है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, भोर सुहानी लेकर फिर से आपके साथ रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित और राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सके, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने निविवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने पर की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इससे रेल परिचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा अवसंरचना और मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। विभाग ने मछुआरों को आज से अगले सोमवार तक अंडमान सागर और अगले तीन दिनों तक पूर्वी मध्य और उससे सटे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। हौसी विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले इस गठबंधन ने सुबह हुई इस कोशिश के काफी देर बाद बयान जारी किया। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices along with 596 locations of partner organizations. The samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing and youth-led discussions. The ministry highlighted that this major initiative is powered by a massive national network combining government youth chapters, spiritual groups, top business chambers, colleges and local organizations to run programs across hundreds of locations. The event will serve as a significant nationwide moment of youth participation, bringing together My Bharat, partner organizations and young people around a shared commitment to a healthier choices and a Nasha Mukt future. This event follows the nationwide launch of the campaign's new phase yesterday. The Election Commission will hold special camps across all polling station locations in the national capital today. The day-long drive aims to assist citizens with fresh inclusions, objections for proposed inclusions or deletions of name in electoral rolls, and corrections to particulars in the electoral rolls. Booth-level officers will remain present at designated polling booths to receive applications. People can submit Form 6 for new voter enrollment, Form 7 for objections or deletion of entries, and Form 8 for any corrections or updating of details in the electoral rolls. Addressing the media regarding the ongoing SIR process, in the National Capital Delhi Chief Electoral Officer Ashok Kumar has clarified that electoral registration officers, EROs, can consider documents other than those listed in the notice during hearings on the case-to-case basis. Government has said that the biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. In a statement, Petroleum and Natural Gas Ministry said that domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. This ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The 20th Asian Games 2026 will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines today. India's techball player Quimsy D'Souza will compete in the bronze medal match against Japan's Yuna Sakamoto and have the first opportunity to open India's medal account at the Continental Multisport event. Later, Indian shooters Elavenil Valaravan, Sonam Nuskar and Vidarsa Vinod will aim for podium finishes in the women's 10-meter air rifle event. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, सुबह का उजाला अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की ज्योत को प्रज्वलित करके सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये महज उजाला नहीं है, जी हाँ। आइए आज की भोर को एक नई उमंग के साथ स्वागत करें।

जीवन पथ पर जीवन की राहें चाहे कितने भी कठिन हो, अगर हमारे मन का विश्वास हौसला बुलंद है तो हम दुनिया पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण दुनिया के हर कोने में हैं। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, सुप्रभात।

जी हाँ, मन की शक्ति और हमारी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो हम सभी ने सुना है और हम सभी जानते हैं। तो फिर भी हम क्यों इस छोटे से लफ्ज़ को हमेशा भूल जाते हैं? जी हाँ, ज़रा सी कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी

आती है तो हम हताश होकर मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं तो उस मुश्किलों का सामना हम हंसते हुए खिलखिलाते हुए कर लेते हैं। और फिर उसके बाद तो दिल गुनगुनाने की सदाएं देने लगता है एक नई ऊर्जा के साथ। जी हाँ, भोर सुहानी दस्तक दे रही है, संदेश दे रही है आपको कि भोर हो गई है और अब एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए संदेश के साथ आज के दिन को शुरू करें।